0: सत्य सतेरा हमारा जोग लागनी है सत्य सतेरा हमारा जोग लागनी है सत्य सतेरा हमारा जोग लागनी है चले जोग लागनी है चले जोग लागनी है
1: रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: कलर्स लाभा एमपेक टेक्नो आइजेल ब्रांड का मोबाइल घड़ी साउंड सिस्टम डिसोम पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान पाइन का साथ ही पुरानो मोबाइल लिएर नया मोबाइल साटिन
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंग बेसी मिलन टोल लेकाली टिकट काउंटर संगई प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 9841063130 र 9813180307
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।